सो अंत सो बहर अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत तन माहे आकाश गया सर्व लोक पूर्ण पद पार वंदन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी वै संतरमा नानक का पातशाह दिस से जाहरा

वडहंस राग का प्रयोग शास्त्रीय संगीत लई भी किया गया है। लोक धुना जिदा घोड़िया अलाउणिया आदि लई भी देह घोड़ी ते काबू पाउण लई शब्द नाल रते होना लाजमी है, क्योंकि शब्द रते वडहंस है सच नाम उधार सच संग्रह है सद सच रह है सच्चा नाम प्यार। मौत वेले गाए जांदे लोक गीतां दी लय अलौणियां वो भी इसे राग विच हन। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच दोनों निषाद अते बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। आरोह विच गंधार वर्जित है, बादी पंचम अते समाधि ऋषव है, गायन समा है दिन का तीजा पहर। गुरु अर्जन देव जी का उच्चारण किया हुआ शब्द धन सवेला जित दर्शन करना हो बलिहारी सतगुर चरना प्रस्तुत कर रहे हैं भाई पृथ्वीपाल सिंह जी इंदौर वाले। अते दूजा शब्द मैं मान वड्डी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा कीर्तन कर रहे हैं भाई परमजोत सिंह जी। सरवण करो पहला शब्द धन सवेला जित दर्शन करना।

कल्याण पाछाई दशमी बिन करतार न कीर्तन मान जय अविनाशी परमेश्वर जान रहो कहाँ पे जो आन जगत में दस असुर हर का आदि प्रपंच दिखाए सब निकले और पंचन करण।

राग गौड़ी माला विच ऋषभ गंधार धैवत सुर कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दी जाति संपूर्ण वादी धैवत संवादी ऋषभ अते समा राग दा पहला पैर है। इस राग विच पाया लाल रतन मन पाया शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

अनक जतन नहीं होत छुटारा, बहुत सियाणप आगल भारा। हर की सेवा निर्मल हेत, प्रभु की दरगह शोभा से। मन मेरे गांव हर नाम का ओला, तुझे न लागे ताता झोला। ज्यों बोहित भय सागर माहे, अंधकार दीपक दीपाहे। अगन शीत काला हस दुख, नाम जपत मन होवत सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूरन होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जिस आप दिवावे।

मन चिंदड़ा फल पाया मेरे गोविंदा, मन चिंदड़ा फल पाया मेरे गोविंदा, मन चिंदड़ा फल पाया मेरे गोविंदा, मन चिंदड़ा।

दाते हो इन्हीं को बलो और आन को दान न लगने को आगे भले इन्हीं को दियो।

अब चल नगर विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर दशमेश पिता दे चरणां च बेनती करके नंद लाल जी कह रहे हन, हे सतगुरु, सिख पंथ दी सिरजना करन वाले खालसा पंथ नू रचनहार साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरसिख दी रहत नू आप दर्शाउणा करो। गुरसिख दा कर्म की है? ते सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने भाई नंद लाल दे

सत संगत अंदर पहुंचना अमृत वेले इशनान करके ते जेड़ा सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज अंदर शरण आउन वाला गुरसिख नहीं, जेड़ा अमृत वेले उठ के इशनान नहीं करदा, प्रात काल सत संग तो बगैर व्यर्थ कर दिंदा, गरीब नवाज कहंदे हन ओ गुरसिख तनखाइया है, ओ गुरसिख गुरसिख नहीं। गरीब नवाज साहब।

चोरी ठगी यारी दा पैसा कतर कर देन। साहब सचे पातशाह महाराज कहंदे ऐसे गुरसिख दा कदे वसा ना करना, क्योंकि हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए, गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। मैं भी ऐसे सिख दी हामी नहीं भरांगा जेड़ा छल फरेब दा धन इकट्ठा करदा ते जेड़ा गुरु नूं दसवंध नहीं देंदा, किरत दस ना हुंदी नहीं करदा। ऐसे गुरसिख दी गवाही सची।

गरीब नवाज सचे पातशाह कहंदे एक नरक नहीं हजारा नरक भोगदा है, जन्म लैंदा है फिर नरक विच पैंदा है, जन्म लैंदा है फिर नरक विच पैंदा है। इथों गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा भाई नंद लाल मेरा गुरसिख दस नहों दी किरत करे, छल फरेब दा धन दौलत मेरी दरगाह अंदर हाजिर नहीं होएगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी दरगाह।

गुरु की संगत विच आउण वाली मां भैण उस नूं मां भैण दा रूप जाने, धी नूं धी दा रूप जाने, बुरी निगाह नाल ना वेखे। साहब गरीब नूं अज सच्चे पातशाह महाराज फरमान करदे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई नंद लाल जी, माए भैण जो आवै संगत, दृष्ट बुरी देखे तिस पंगत, सिख होए जो करै क्रोध, कन्या मूल ना देवै सोध। जेड़ा गुरसिख सत संगत अंदर बैठी हुई मां भैण नूं मां भैण ना जाने, धी नूं धी दा रूप ना जाने, गरीब नूं अज सच्चे पातशाह कहंदे हन ऐसे गुरसिख, ऐसे गुरसिख दा मैं दर्शन करके राजी नहीं, वसा लैके राजी नहीं। ते जेड़े कुड़ी मार हुंदे ने ना, जन्म तो ही बच्ची दा गला घुट देना, गरीब नूं अज सच्चे पातशाह कहंदे गुरसिख दा सुभाव निम्रता सहित होवे, क्रोध ना करे। बच्ची ने घर अंदर जन्म लिया, उस नूं बच्चे दा ही रूप समझ के पाले, क्योंकि सिंह मेरा जेड़ा है वह सपुत्र है, बच्ची जेड़ी कौर है ते छोटा सपुत्र है राजे दा बादशाह दा, इस करके बच्ची ते बच्चे नूं

सात जन्म कुश्ती होए मरे, सिख होके सिर ते टोपी धर लैनी, टोप लै लेना भाव के पग बन के रख देनी, माया वाली पग ला बन के रख देनी, काफी दिन तक बनी रहनी, रोजाना उस नु चुक के सिर ते धर देना। गरीब नु आज कहंदे हाथ किस वास्ते दिते ने, जे अपना दस्तारा नहीं सजा सकते, जे अपना दस्तारा अपने हथी रोजाना सजाओ, खूबसूरत लगो गुरु के सिखो। इस करके गरीब नु आज कहंदे ओ मेरा सिख ने जेड़ा टोपी सिर ते रखदा, ओ सत जन्म कोड़ियां दे जन्म दे विच बतीत करदा। गरीब नु आज कहंदे तैनू हाथ क्यों दिते, कोड़ा हो जांदा। होए सिख सिर टोपी धरै, सात जन्म कुश्ती।

अकाल पुरख महाराज दे दिते होए मंत्र तो बगैर दूजा मंत्र जपन वाला गरीब नवाज कहंदे मेरा सिख नहीं। भाई नंद लाल ए मर्यादा लिखी जाओ नाल नाल जिहड़े मैं वचन कह रहा ते इन्हां दे अंदर कोई तब्दीली ना आवे। जो मेरे मुंह चो निकल रहे ने हू बहू उसे तरह लिखे जान बल्कि प्रोड़ता करके लिखे जान ते वाधू चंगी गल है। क्योंकि सिख ए ना कहे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे निकले हुए मुंह चो वाग शायद समय दे गुरसिखा ने फर्क पा दे।

रोजाना दा उचारण वाहिगुरु होवे, अठे पैर कम ते भी वाहिगुरु वाहिगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहिगुरु करे, घर विच बैठा वाहिगुरु करे, रसना दे उपर वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु दा टिका होवे, ते वाहिगुरु नू हिरदे अंदर वसा लवे, ऐसा वाहिगुरु हिरदे च वसे भई वाहिगुरु का खालसा अगो आउंदा होया दीदार दे देवे, भई गुरु का सिख आ रहा है ओनू मिलन वास्ते अगा फतेह बुलाउन वास्ते जावे, जाके सामने गुरसिख दे दर्शन करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला के गुरसिख दा हाल पुछे। ए ना होवे भई गुरसिख नू वेख के राह ही छड जावे ते फतेह ते अलग रह गई। अज दे समय दे अंदर गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत करदा है, गरीब नवाज सचे पातशाह ने आउन वाले समय नू वेख्या, इस करके ए पूर ने पा दिते गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत नहीं करेगा,

शस्त्रहीन एक बू न होई, रहतवान गुरखा सिंह सोई। गरीब नवाज कहंदे जेड़े पंज ककार दिते ने ना खालसे नूं पहनाए ने, पूरी यूनिफॉर्म तो बगैर, पूरी ड्रेस तो बगैर गुरु का सिख सिंह नहीं रह जांदा, खालसा नहीं रह जांदा। जिवें किसे ऑफिसर दी यूनिफॉर्म होवे, वर्दी होवे, उन्हूं लाजमी है भी जदों ऑफिस विच जावे, जदों काम ते जावे, जदों मालक दी हजूरी अंदर हाजरी होवे, उदों ओ जित्ती हुई ड्रेस नूं पहने। गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे नूं पंज ककार बख्शे ने, ते गरीब नवाज कहंदे मैं ये बर्दाश्त नहीं करांगा भी मेरा गुरसिख पंजा ककारां दा धारनी ना होवे, ला के फिरदा रवे, ऐसी गल ना होवे। शस्त्रहीन ए कबू ना होई, कदे भी शस्त्रहीन ना हो। शस्त्र हमेशा पास रखे, शस्त्र ते शास्त्र। शास्त्र है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, ते शस्त्र है ए जेड़े पीर हन महाराज ने दिते ने रखिया वास्ते। ए हामी भरनगे सच्ची दरगाह दे अंदर के गुरु का सिख शस्त्रां दे नाल शास्त्र दी पूजा करदा सी। शस्त्रहीन एक

शराब पीनी, नशियां दा सेवन करना। गुरु का सिख निज नारी के संग अपना जीवन बतीत करेगा, पर नारी दा सुपना भी इस दी जिंदगी अंदर नहीं आएगा। जुआ कदे नहीं खेडेगा, क्लबां दे अंदर जा जाके जुए खेलने, घरां दे अंदर बह के ताशा खेडनियां, कार खेडने, गुरु के सिख नूं मनाही है। पर नारी इहदा सेवन ना करना, जुआ ना खेडना, असत झूठ ना बोलना, चोरी ना करनी, मदरा शराब नशे आदिक दी वरतों ना करनी। गरीब नूं अज कहिंदे इह पंज ऐब ने जगत दे, ਇਹ ਸਿੰਘ ਤਜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਰੀ ਜੂ

0: मेरो दर्शन नहे ते पापी त्यागे देख।
1: वो ते अपने आप नु सिख ना मनन जिन्हां ने केस मनाए हुए ने, मेरे तां सिख ओ भी नहीं जिन्हां ने अमृत नहीं छकिया, जिन्हां ने पाहुल नहीं लई ते केवल केस धारण कीते हुए ने, ते सबना मोहरे आके बहन दा दावा करदे ने। उची उची आवाज गुरु महाराज की दिती हुई बाणी दा याप जाप करदे ने, पर आप पगाउंदे नहीं। केस रखे हुए ने, पाहुल नहीं छकी हुई, खंडे बाटे का अमृत नहीं छकिया होया, वो भी मेरे सिख नहीं। ते जेड़े सहज धारी ने, जेड़े अपने आप नूं कहाउंदे ने वी केस मना के वी गुरु के सिख हां, सिखी अंदर है, वो मेरे सिख किवें हो सकते ने। साहिब गरीब नूं आज सच्चे पातशाह महाराज ने पवित्र वाक भाई नंद लाल नूं सारे दे सारे दिते। भाई नंद लाल ने ये वाक गरीब नूं आज सच्चे पातशाह जी महाराज दे लिख ले। संकल्प कीता गरीब नूं आज समयां दा समां बतीत हो जाएगा कि ये रहत मर्यादा सिखां दे अंदर ज्यों दी त्यों चलेगी। ये गरीब नूं आज कहन लगे नहीं, मेरे सिख मेरा खालसा राज दे अंदर आके भटक जाएगा, ते जदों ये भटकेगा खुआर हो जाएगा, दिन ब दिन खुआर हुंदा चला जाएगा, दिन ब दिन खुआर हुंदा चला जाएगा, क्योंकि इस नूं राज पाउंदा नहीं। ते जदों इसने राज नाल प्यार कीता उदों इसका प्यार गुरु नाल टुट जाएगा, सिखी दी दात मूलों निकल जाएगी। कुर्सी नाल प्यार हो गया ते गुरु नाल प्यार नहीं रहेगा, तख्त नाल प्यार नहीं रहेगा। जेड़ा गुरु के तख्त दे सामने अपनी कुर्सी डाल लेगा, वह गुरु का सिख नहीं होएगा, वह खुआर हुंदा चला जाएगा। ते फिर समयां दा समां बतीत होएगा, इतनी खुआरी होएगी, उस खुआरी नूं हरन वास्ते फिर गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज कलकी रूप अवतार धारण करनगे। निरंकार दे हुक्मां मुताबक लिखिया गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने 33

संबोधित श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकित चैत श्री ही है। बड़े मनोरंजक अते कठिन राग नूं शुद्धता सहित महान गायक ही गा सकते हैं। चैत श्री का प्रभाव सुख अते खुशी देने वाला है। खुशी लैण लई मन दे आलसिया उगलाना वाला सुभा छड हीरे विच रतन नाम नूं वसा के गुरु बख्शिश लैनी पैंदी है। इस राग नूं मनोरंजक बनाउण लई इस दे स्वरूप विच ईशव दैवत कोमल मध्यम तीबर बाकी स्वर शुद्ध लगाए जांदे हन। आरोह विच ऋषव अते दैवत वर्जित हन। इस दा वादी सुर गंधार अते संवादी निषाद है। यह राग दिन दे चौथे पहर गाया जांदा है। राग जैतसरी विच दो शब्दां दा कीर्तन सरवण करो। पहला शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी दी रचना है। इस नूं गा रहे हन बीबी नवेदिता कौर जी। शब्द दी तुक है कोई जन हर सियो देवै जोर अते दूजा शब्द गुरु रामदास जी दी रचना हर हर सिमरो अगम अपारा भाई महेंद्र सिंह जी सागर प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला शब्द कोई जन हर सियो देवै जोर।

अमृत वेला है, तो अमृत वेले जाके पहला काम ये करना है कि कार्य स्नान सेवन करो, स्नान भी हो गया।

नदी विच इशनान कर। मर्दाने ने वस्त्र पकड़े, हजूर वही नदी विच प्रवेश करते हैं, चुभी मारते हैं। पैरी साध संगत बाहर नहीं निकले, आखो सी बाबे ने ऐसी चुभी मारी। मर्दाना बड़ा चिर उड़ीकदा रहे, पातशाह हुण बाहर आउंदे हन, हुण पानी विचों बाहर निकलदे, पर हजूर निकले। मर्दाना नदी दे कंडे ते कदे इधर भज्जा जांदा, बाबा किधर गए हो, कदे इधर भज्जा। दिन चढ़ गया, अजे भी बाबा बाहर नहीं आया। प्यारी सास संगत, बेबे नानकी नू जाके लोका ने कहा, धन गुरु नानक पातशाह जी दे प्यार वाले ने जाके कहा, बेबे तेरे वीर ने वही नदी में चुभी मारी है, बाहर नहीं आया। प्रेमी तो अखा विचों पानी बहा रहे है, जिन्हां दे अंदर गुरु नानक दा प्यार सी, उन्हां दे अखा विचों तो प्यार दे आंसू जा रहे है। पर जो लोग नुक्ताचीन सन, नास्तिक सन, उन्होंने कहा गुरु नानक डूब गए, आखो सी। दौलत खान आली साहब किताब करना सी मोदी खाने दा, मोदी खाना गरीबा नु लुटा दिता है। इस भाइये जराम नु भी बड़ी उदासी, पर बेबे नानकी ने कहा तुसी उदास ना हो। नानकी तलवंडी तो नाल लेके आया सा नानक नो, मैं ते कालू ने कहा सी जयराम इसनो किसी कम लाओ, मोदी खाना ले दिता। पर आज पता नहीं की होया, बेबे ने कहा नहीं तुसी उदास ना हो, मेरा वीर कदे डूब नहीं सकता, ओ ता डूबिया नु उतारन वास्ते आया। किसे महापुरुष ने लिखे है, चंद्रमा दी मिसाल दित्ती है गुरु दी, भी चंद्रमा की करदा है ते गुरु की करदा। तो लिखे है, कालू चंद दिया नूर भरे चन्ना, चन्नो सौ गुणा वध लिशकार दाए, चढ़े चंद ता डूबदा तारियां नू, तो ता डूबिया होया नू। चंद्रमा चढ़ जाए तारियां दी लो मध्यम पै जांदी, फिर चंद्रमा दुनिया नू रोशनी देंदा है, दे मत्थे ते कालक लगी, स्याही अपनी चन तो नहीं लेंदी, तू लखां दी स्याही उतारदा है। फिर उच्चा वसना है अर्श दे किंगरे ते, ऐ पर नीवियां ते चाती मार रहा है। तो प्यारी सत संगत, सारे सुल्तानपुर च बड़ा प्रोपेगंडा हो रहा है, आखिरकार हजूर वही नदी दे विच भी मार के किथे पहुंचे, सचखंड पहुंचे। अगे नूर ही नूर है, सचखंड दे दरवाजे अगे हजूर ने तकिया, लखाई मोहम्मद, लखाई रामचंद, लखाई कृष्ण, लखाई गोरख, लखाई देवी देवते खड़ोते। तो साहबा ने थे शब्द उच्चारण कीता है, जित दर लख मोहम्मदा, लख ब्रह्मा विष्णु महेश, लख लख राम वडीरिया, लख राही लख। ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंदर तो दर्ज नहीं है, पर भाई बाले वाली साखी विच लिखी है। हजूर सचखंड दे दरवाजे थानी अंदर चले गए, उस जोत भी जाके लीन हो।

वीर लक्षण आशा जी दीवार दर लगा के कीर्तन की समाप्ति उसपरंत अरदास गुरु के हुक्मनामे ए मर्यादा उदास ने बेनती की थी सी भी आई दी चाह सेवक बोलो तो मैं की सेवा कर सकता हाँ तो जो तुसी प्यार दिता है और ये भी गुरु की प्रेरणा से तो उस संसार अज चाह दा लंगर तैयार है और मैं तो मैं बेनती की थी सी कई प्रेमी कहन लगे भाई जी साडा भी सच आखो श्री भाई कई प्रेमी ते नाल उन्होंने कहा भी साडा नाम ना ले लो ते असी भी जिन्हां जिन्हां ते गुरु ने मेहर की थी सेवका नाल हित कीता है तो उन्होंने चाह दा लंगर तैयार किया है तो हुण प्यारी साध संगत सारे प्यार नाल क्योंकि अज आसा दीवार दा कीर्तन भी पूरा हो तो मैं चाहूंगा अखीरला छंद अज आसा राग विच आसा राग तो आओ अखीरला ये छंद है अज आसा जी दी वार दे कीर्तन दा भोग पै रहा है सर्व आसा पूर्णी आसा जी दी वार तो ये छंद आपां आसा राग च लगाउंदे

धन गुरु अर्जुन देव महाराज, दिन राती आराधा प्यारो, निमख ना की जे ढीला, और ए भी गुजरी राग, और गुजरी राग दी तुम्हार है।

માટે એ વસ્તુ વસ્તુનું કોઈ લેન એને બદલે કોઈ ખાન કોઈ ભૂખ દાખી મરદાનમાં કાહી ચીર ફિરદા રહ્યા और इस वस्तु के लैन वाला कोई गाहक नहीं हार के चरस के इस मरदाना खड़ा हो गया सोचता है मार्क ने कुछ से एडी वड्डी दात बख्शी अर्थ के लैन वाला ही कोई कौन लवेगा इसमें मरदाने में सामने तक किया एक अरायण बैठी जिसकी टोकरी गाजर के मूलियां मरदाने ने सोचा चलो मैं इस अरायण में दे देंगे कुछ खाण में दे देंगे खा के अपने पेट में चुपका देते भुख का दुख दूर मरदाना अरैण के कोल आके खड़ो गया मुठ खोली देके आ माई आ लवेगी अरैण ने तकिया ते सिर फेरे मैं इस पत्थर नु की करना पर ख्याल है तो पत्थर पर चमकदा बड़ा चलो ले लेनी है मेरे बच्चे पे खेल बच्चों की खुशी वास्ते माता पिता कितनी कोशिश कर बच्चों खिलौने लेके देते हैं पैसे देते हैं मठियाइया देते हैं साढ़े बच्चे खुश हो बच्चों की खुशी वास्ते माता पिता की कितनी कुर्बानी अनो बच्चे हैं जो वड़े होके माता पिता की खुशी माता पिता ने बच्चे की खुशी वास्ते कितनी वड्डी कालना कर ओ बच्चा धन है जो माता पिता की करती बाबा आनंद सिंह जी महाराज पूर्ण महापुरुष अपनी पवित्र पावन रचना को वचन कर दे कि जिस बच्चे ने माता पिता की प्रसन्नता लै ली है उस उत्ते रब की सदा ही प्रसन्न सदा ही क्योंकि माता पिता की बड़ी कहानी साहबा ने बाणी की लिखा गुरुदेव माता गुरुदेव पिता

रहने तो किया है तो पत्थर पर चमकना भरा है। लेने मिया मेरे बच्चे पे खेले, प्रधान ने किया भाई इन्हें बदले की दे देंगी। तो प्यारी सात संगत अरण ने टोकरी जो एक मूली चुकी, मर्दन का बड़ा हैरान है। मालिक ने तो किया सी मर्दानिया बड़ी वड्डी दात है, पहला का लैण वाला कोई गाहक नहीं मिले, जे मिले तो मुल की पिया एक मुल। प्रधान ने क्या माई एक मूली छोड़ी है तू दो मूलियां तो दे। अरे हंस के मैं तो एक मूली भी तेरे उते एहसान करके पी दी, परदेसी जापदा दूरों आया जापदा, दूर का पानी जापदा क्योंकि तेरे पैरों की धूल पर बिटे भी चुकी। एक मूली भी ऐसा मरदाना अगे अगे हलवाई की दुकान, हलवाई ने तरह तरह दिया मठियाइया काजी तैयार करके सोने चांदी के वर्क लगा के थाला रखी, काजिया मठियाइया वाल करके भुखे मरदाने के मूह पानी पाया, मतलब हलवाई नू दे देती। गाकों की भीड़ पहाड़ को बड़ी सी, पर मरदाना लंघदा लंघदा हलवाई के कोल से क्यों जी आ लोगे, हलवाई ने तकिया ते सिर फेरे, मैं इसनू की करन और क्या लाया, अद्धी शताकी का वटा गुम हो गया वो थां ते रख लिया कर, क्योंकि उस वेले पत्थर दी वटी कर जिस तरह कल लोहे दे वटे कई तरह के साधन बन गए हैं हम का, और उस वेले पत्थर दी हूं भी कदे सुल्तानपुर तुम जा जिथे मेरे धन गुरु नानक पातशाह जी ने मोदी खाना चलाए दुकान चलाई तकड़ी तो वो वटे हूं भी पे। हलवाई भी तके है तो पत्थर पर चमकदा बड़ा, मेरा भी अद्धी शताकी का वटा गुम हो गया वो थां ते रख लवांगा। हलवाई कह लगा लै नहीं, मरदाने ने किया ये बदले फिर मिठाई कि नहीं दोगे, हलवाई ने कहा इन पाओ मिठाई दी। मरदाने ने किया जी पा थोड़ी कोई ज्यादा दो क्योंकि मैं कला नहीं, मेरे नाल मेरा मालिक मैं उन्हें भुखा तो नहीं कहना, पर तीन दिन हो गए हैं रोटी उन्हें भी नहीं खाई, पता नहीं केड़े आहार नालों जी एक शेर मठियाई दर्ज। हलवाई ने किया इस तू ज्यादा नहीं दी, तेरी शिकायत सुन ली। मरदाना निराश होके वापस अगों कोई भला पुरुष मिले, उदास मरदाने वाल तक के पूछा जी हो जी तुसी उदास क्यों हो। मरदाने ने सारी विख्या दी, मालिक ने सुट के दात बरसी है कोई लैण वाला नहीं मिलता, किसी ने दिखानी सी मरदाने ने क्या दिखाई केदू अरैल और किसनू हलवाई, इन्हें क्या क्षमा कर जी थोड़े को वस्तु है ये अरैणा से हलवाइया के लैण वाली। मरदाने ने कहा फिर कौन लेगा, इस गुरमुख ने कहा फलां बाजार में चले जाओ, एक बड़ी सुंदर दुकान उस दुकान के अंदर
शीशे ने चौकिया के अंदर मैं इन जी कई लाल लाल गीटियां पे तकी उथे ले जाओ एदा बुल उठ के बरदाना थोड़ा जि खुश कर वो दुकान किसकी है जौरी उस जौरी का नाम की है जी उसका नाम है साल मरदाना पुछता पुछा साल सराय जौरी की दुकान पे आके चले दुकान बड़ी सुंदर बड़ा सुंदर कारपेट बिछिया हुए अंदरों सेंट दिया खुशबू आ रही मरदाने ने जिस वेले दुकान के अंदर पैर पाए साल सराय ने तकिया कोई आया बड़े अदब नाल उठ के हथ जोड़ के आओ जी आया इतने बैठ मरदाने ने सोनी चेयर पे कुर्सी पे मरदाना बड़ा खुश सोचन लगा मन लेना देना तो एक पासे ने पर बोलिया बड़ा मिठा मिठा बोलना भी एक जादू मिठा बोलना भी इंसानियत इंसान होके कौड़ा बोलता है ओदा बोलना परवान ऐसा बचन कदे भी ना करिए जिदे नाल किसी ने मन में दुख भाई गुरुदास जी ने भी लिखे सिखदा जीवन पिछले राती जागण नाम दान इशनान दृढ़ाए फिर मिठा बोलन निव चलन हाथों देके भला प्रधाना बड़ा खुश मिठा बोल प्रधाने ने मुठ खोली शाह जी आ लोगे सांस राय ने क्या जरा ठहर नौकर नु बुलाए बच्चा धरका जी मालिक अंदर चौकी ले आंदी एदे चिट्टा रुमाल पापा जी सांस राय ने मरदाने वाल तकिया ते किया जी ये कोई कौड़ियां नहीं जो मिट्टी कट्टे विच रोलोगे ये लाल इनू इत्थे रखो मरदाने ने रख साल सराय ने परख वाली अखना लाल तकिया फिर लाल वाल वेदिया वेदिया साल सराय का सिर चुक गया सिर चुके नौकर वाल तकिया बेटा धरका जी मालिक लिया 100 रुपये की थैली लिया साल सराय ने लाल बेटी रख के मत्था टेकिया लाल ते 101 रुपया साल सराय ने मरदाने की झोली पा मरदाना बहुत हैरान हो गया सोचने लगा कदे 101 रुपये की थैली वाल तकद कदे साल सराय के मूह वाल वेखदा है रह नहीं सकिया मरदाना कहने लगा शाह जी गुस्ताखी माफ करे अजे भला कोई नशा पानी तो नहीं खाते पीते आपको श्री वाले साल सराय ने क्या कोई नशा प्रधाना कहने लगा फिर आके किता जी नाले लाल भी नहीं लिया नाले 101 रुपया हो साल सराय के नेत्र पर उस्तादा के वारे वारे मेरे उस्ताद ने मैं रुकी कि साल सराय योजना सच्चा ते सुचा लाल दुनिया से पर जे तेरे पाग जागन योजे लाल दे तेन दर्शन हो जान और मुल पा के अपमान न करी 101 रुपया दर्शन पे कर ए तो इनी भेद मरदाना बड़ा खुश है बाबा तू भी तन है तेरी दात भी तन रुपये पर कौन पिया करता है साल सराय जी ने परख लिया लाल लाल पर जिसे परख वाली अखा दे कोल आ गया तो मुड़ नहीं पै पेट अदब हो रहे
सत्कार हो। ऐसा पैनंद लाल जी ने लिखा।

सद्र लाले उग आशिक न दानद हेत कस्तीम पे याकूत दानद चश्म गौहर बार इसका तर्जमा किसी ने किया है पंजाबी देखा है

पास सारे हम लोग साहब सिंधु ज्ञान के पास का आप मुझे करो करो छाए हो फूल हार बस्तर जी सब पे नाम जुड़ते सब दादर कर दे कीर्तन कहे दानो प्रकाश करो जी पास कहा आप सोने सोने गाल में वीर पाइए जो सिखी जीवन शब्द का प्यार सदा चल दिया सना बस।

सर्व कर्ता के ताते स्वामी देह सुपहरण खाओ देह सुपहरण खाओ कब निरय कब निरय प्रभ निरंतर जानी प्रभ निरंतर जानी।

प्रभु मेरा अंतर जामी प्रभु मेरा अंतर जामी प्रभु मेरा अंतर जामी।